जो तुझे मैं चाहिए की जगह गुरुम कबीजा एकले सरून कले सरून कले सरून है ऑलराइट अच्छी नई डे को शिक्षा मन की जगह सुनी ने आज बॉयज के लिए कास को रोग बिगो जगह बाग पोना जी ने रे टू मंथ अन्य रे 10,000 अन्य रे 16,000 लेकिन एक अन्य रे आई कले बी वॉट 980 कले कोसमा 602 Edwin 952, Gilbert 670, Joseph 777 shillings, Gullet Beta 359, Vincent 922, Gullet Joanne, Nothing Nintendo, which you guys turn in 800, Walter, Nothing Nintendo 722, Gullet Engon, Nothing Nintendo, Gullet Elabani, Nothing Nintendo, which you guys turn in 802, Bonvise, Nothing Nintendo 921, Betty Norton Nintendo Aginegi to Ghost on name a 602 Fancy and Norton Nintendo 588. No Agin Norton meeting on a Thomas or my name Jan Big Hillary and Norton Nintendo Aginegi to Ghost on name Norton Nintendo 1009. Tindo 1009 get again to Ghost on name. Uncle Lendini Kumalugi Giri Casano Mona Negative Ghost on name. Go think you get it, ticket it, go to Manuke Tad. Aisha, aku minggu lalu nampak orang menurut saya, orang ini nampi bijang Google sih orang ini, anak negeri ini sahaja tu kule, ini kaya radio, kamu orang Aisha lagi nampak orang menurut kita biasa, negur umen negur ni, netor kaki ada, kita sih kau suka ngurik aja, cinta ni anle, sih kule jadi biasa tu, ah, giu nonu, eh, giu aku kira ni kita jaga ni.